0: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी Toyota, the smart choice.
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. Sunte rahiye, sunate rahiye, bajate rahiye, jo karna hai kariye.

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच वी आईएमई एडवाइजर।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: Attention, commission on and better than our

0: is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye Radio Haji.
5: Bale bale bale.
4: Bale bale bale.
5: Thank you.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यू आर लिसनिंग
3: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।

हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: वाह,
1: बड़ी नमीजी बोली है,
0: क्या बात है, महात्मा गांधी ने भी पाई होनी है।
1: आलू आलू आलू नी बापू गांधी ने कीता चरखा चालू नी बापू गांधी अभी पौनी आई बीबी
0: बल्ले क्या बात
1: बोलियां दी खूबसूरती है ना, जेडी मर्जी बना लो।
0: ये गल सही है ना।
1: थैंक यू ना,
2: थैंक यू मेरे दीदी नाल गल कर।
1: हेलो
2: जी ते अंकल जी,
1: सत श्री अकाल। हुण अंकल तू ही हो
0: बावजूद
1: भी मेरे को गलती होगी तो फिर अंकल कह लेना।
0: ठीक हो गया,
1: मैं मतलब वेखना चाह रहा हूं इदां भला ठीक हुंदा
0: बीबिया चाहिए लिस्ट मैं कालियां इनका पाके ना बैक साइड ते ऐसा गिटार लेके अपनी खड़ा हो जाऊंगा। पाए बोली ते जचे ना जचे, पर उदा फोटो जो लगना चाहिए ना कि तकड़ा कॉन्सर्ट टाइप लेवल हुंदा।
1: हाँ
0: है ना, डन हो गया।
2: ढोलकी पापा बजा लेंगे,
1: बस ठीक है,
0: बस गल खत्म हो गई। ढोलकी गिटार
1: और
0: ते बस हो गई बोली तैयार।
1: हाँ
2: गुड, हाँ जी
1: ओके हो गया काम ते फिर।
2: हाँ जी
1: की सुनाओगे फिर?
2: आज मैं 15 अगस्त ते कुछ सुनावांगी।
1: हाँ जी,
2: सिंध वासियों रखना याद सानू, किते दिला तो ना भुला जाना, खातर वतन दी लगे हां चढ़न फांसी, सानू देख के नहीं घबरा जाना, साडी मौत ने वतन दी वासियां दे दिल्ली वतन दा इश्क जगा जाना, देश वासियों चमकना चंद वांगू, किते बदला हेठ ना आ जाना, करके देश दे नाल त्रो यारो दा कौम दे मत्थे ना ला जाना, मुला सिंह किरपाल नवाब वांगू अमर सिंह ना किसे कहा जाना, जेला होण कॉलेज वतन सेवकां दे दाखल होए डिग्रियां पा जाना, हुंदे फेल बहुत अते पास छोड़े वतन वासियो दिल ना ढा जाना, प्यारे वीर नो चले हां असी जिथे इसे रस्ते हो तुसी भी आ जाना, इसे रस्ते हो तुसी भी आ जाना।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस,
2: थैंक यू,
1: वेरी नाइस, बहुत सोना याद कर लिया।
2: थैंक यू
1: हैव अ नाइस डे। कल आओगे तुम उठे फिर फेडरेशन स्क्वायर
0: ते? हां फ्लैग होस्टिंग ते।
2: हाँ जी आ जाएंगे।
0: हाँ?
1: है
0: जी,
1: हाँ,
0: हाँ, हाँ, जी आ रही है।
1: ओके
0: गुड,
2: साढ़े
0: दस शुरू
1: सवेरे शुरू हो जाना। हाँ,
0: हाँ, मतलब प्रोग्राम तो 10 बजे तो शुरू हो जाता, पर होस्टिंग वही है साढ़े दस।
1: चलो थैंक यू
2: वीर जी, तुम मिलने
1: आवांगे। ठीक है भैणा, थैंक यू। मैं वेखा भाई न्याणे की पिकअप किड्डी वेख
0: देख लो
1: किड्डी पिकअप मार दे उस वेले। नैक्सट साढ़े नाल ने ताज एंड सिबलिंग। तो सत श्रीकाल एम्बर, तुसी आने रहो एम्बर गुरबाज।
3: सत श्रीकाल
1: एवरीडे
0: सिमिलर ब्रेकफास्ट, वेरी गुड।
3: समटाइम एग एंड बेकन।
0: ਉੱਪਰ ਸਿਰਪ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੇਪਲ ਵਾਲਾ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਸੈਟਰਡੇ
2: ਪੈਨਕੇਕ
1: ਸੁਣਾਓਗੇ ਅੱਜ
2: ਬੋਲੀ
1: ਹਾਂਜੀ

0: वेरी गुड भाई
1: जी, जा बच के प्लेटफॉर्म तो। नेक्स्ट बारी के दिया
2: स्त्रीलिंग पुलिंग खराब करी जाने जे
1: की खाए हो सिडनी तो
2: भाई
1: नाल एक बंदा रख लो राज चला लिया करूगा ते तुसीं सौ लिया करो।
2: हां अभी ठीक है
3: लंबी रेल बनावागे आवागे आवेगा एक जावेगा
1: वाटी कट छड़े भाजी
2: वेरी गुड वेरी नाइस
1: थैंक यू भाजी हवा भर के थैंक यू
2: यार ट्रिक हो गया सी
1: पापा एशलीन वर्गी आवाज नहीं कढ़ सकदे पर एशलीन पापा वर्गी कढ़ लैंदी आवाज। थैंक यू बल्ले बल्ले बल्ले पापा नू दस दियो भी मम्मा ने चपेट बाटे रखी अच्छा मामा जी
2: चलो
1: सत श्रीकाल मामा जी सत श्रीकाल मामा जी
2: किवें हो
1: मामा जी रखड़ी ते आयो वही आए हो
2: तुरदे फिर
3: चल जाना
1: चल जाना ओके किन्ने दिन रहोगे
3: दो दिन
2: घट ने
1: ताड़ी को सेवा पानी की नहीं इन्ह ने
2: नहीं चलो
1: एक जरा हां जी मामा जी और वीर जी तो बच के रहो वीर जी ना बड़ा इंटेलिजेंट जे बंदा सरदार जी ने सुनाओगे फिर अज
3: एक बोली
1: हाँ जी
3: मासी मेरे नेदा वे खादे मासी नेदा वे खादे पुआने खादे दोदे पुआने खादे दोदे की नचा खड़ खड़
1: ना खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़
3: खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़
1: खड़ खड़ खड़ खड़
3: खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़
1: खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़
2: बाबा जी जिंदाबाद है जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे बाबा जी
1: मामा जी जिंदाबाद ट्रक जिंदाबाद
2: ट्रक जिंदाबाद सिडनी जिंदाबाद
3: ट्रक उड़ लिया प्या
1: अच्छा उड़ गया वा जो तीन सुकने पाते हो ना धो के उदो चिटकनी ला दया करो उत्ते फिर नहीं उडूगा ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਗ ਚੁੰਡੀ ਲਾਇਓ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡਣ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਟਰੱਕ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
2: ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੈਰੀ ਗੁਡ
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਨਾਇਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਯਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੀ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਹੈ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

अभी सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी रेडियो
3: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: रेडियो हांजी 1674 AM ते तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। अज शनिवार 15 अगस्त दे दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दीआं खबरां लैके आए। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज दा शुरुआत। व्हाइट हाउस ने वीरवार दे दिन जारी एक रिपोर्ट दे विच दावा कीता है कि भारत सने 40 तो ज्यादा देशां ने चीन नूं अमरीकी टैरिफ तो राहत देण दे विच राहत टैरिफ तो बचण दे विच मदद कीती सी, जिस दे लई चीनी समान नूं अजिहे देशां च रस्ते दे विच ही अमरीका दे विच भेज दिता गया। इस अजिहे देशां दे रस्ते तो जरिए अमरीका भेजा गया जिथे के टैरिफ बहुत घट। रिपोर्ट दे विच कैनेडा, भारत, मैक्सीको, जापान ते साउथ कोरिया सने कई देशां दा नां लिया गया। व्हाइट हाउस दे मुताबिक इन्हां देशां दे जरिए चीन ने अरबां डालर दे अमरीकी टैरिफ तो बचण दी कोशिश कीती सी। उथे वाशिंगटन स्थित चीनी सफारतखाने दे बुलारे ने दस्सिया है कि अमरीका दे विच ट्रेड वार दे अंदर किसे दी जित नहीं होएगी। उन्होंने अमरीका दे द्वारा टैरिफ लगाए जाण दे तहत चीनी कंपनियां नूं निशाना बनाए जाण दा विरोध भी किया। ये रिपोर्ट अजिहे समय च सामने आई है जदों अमरीका ते चीन दे दरमियान टैरिफ ते पाबंदियां नूं लैके तनाव फिलहाल बनिया होया है। उथे भारत दीआं खबरां दी सांझ पाईए ते सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार दे दिन अपाहज लोकां नूं लैके इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो दे विच कीती गई असंवेदनशील टिप्पणियां दे मामले च कॉमेडियन समय रैना ते चार होरना कॉमेडियन दे खिलाफ अपराधक मामलियां नूं हुण रद्द कर दिता है। बार एंड बेंच वैबसाइट दे मुताबिक भारत दे चीफ जस्टिस सूर्याकांत, जस्टिस जमीलिया बागची ते वी मोहन्ना दी बेंच ने यह हुक्म दिता है। समय रैना दे इलावा इस मामले च राहत पाने वाले होरना लोकां च विपुल गोयल, बलराज, परमजीत सिंह गई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली, आदित्य देसाई ते निशांत जगदीश तमर शामिल ने। लाइवला दे मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपाहज लोकां दे खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणियां करन नूं लैके उन्हां ते दर्ज FIR नूं भी रद्द कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच दे दायरे दे विच इंडियाज़ गॉट लेटेंट दा विवादत एपीसोड जिहड़ा 14 नवंबर 2024 नूं हैबिटाट दे विच शूट कीता गया सी, बाद च प्रसारित भी होया सी, उस तों बाद इह गल कही कि दोहां ने असल दे विच माफ करना समय रैना ने इस मामले दे विच जिहड़ी फाउंडेशन बनाई है उस नूं लैके अपाहज लोकां दे इलाज दे लई जिहड़ा धन इकट्ठा कीता और 1 महीने तों वी घट समय दे विच 2 प्रोग्राम आयोजित किते ने उस दे तहत उहनां दी सराहना कीती जांदी है। उथे कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना दे लैके पुछे गए सवालां दे मामले दे विच शक जताया। पार्टी ने दोष मढ़िया कि केंद्र सरकार ने इस दे लई सियासी दलां दे नाल कोई चर्चा ही नहीं कीती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स दे उत्ते लिखिया कि 6 मई 2025 नूं जाति जनगणना दे संबंध दे विच प्रधानमंत्री नूं कांग्रेस दे प्रमुख ने एक पत्र लिखिया सी। सब तो पहले ते सब तो बुनियादी सुझाव नूं पूरी तरह दे नाल नज़रअंदाज कर दिता गया। नाल ही खड़गे जी दी मंग दे मुताबिक सियासी दलां दे नाल कोई चर्चा भी नहीं कीती गई। जयराम रमेश ने मल्लिकार्जुन खड़गे दे उस चिट्ठी नूं एक्स दे उत्ते साझा भी किया। खड़गे जी दे चिट्ठी दे विच प्रधानमंत्री नूं संबोधन करदिआं लिखिआ सी कि 16 अप्रैल 2023 नूं तुहानूं पत्र लिख के कांग्रेस दी तरफ तों जाति जनगणना करवाउण दी मंग तुहाडे सामणे रखी है। अफसोस इस गल दा है कि उस पत्र दा वी मैनूं कोई जवाब नहीं मिलिआ। इस करके हुण साडी पार्टी दे नेतावां दी तरफ तों लगातार इस मसले दे उत्ते तुहाडे तों मंग कीती जा रही है। दस दिए इस तों पहलां एक गजट नोटिफिकेशन दे जरिए गृह मंत्रालय ने रजिस्ट्रार जनरल दे दफ्तर नूं दस्सिआ सी कि साल 2027 दे लई हो रही मरदमशुमारी दे संबंध दे विच अधिकारी लोकां तों 40 तरह दे सवाल पुछे जा सकदे ने। इस दे विच धर्म, नाम, विवाहक स्थिति, जन्म स्थान, स्थानक निवास, बैंक दे खात्यां दी कुल गिनती, मोबाइल नंबर आदि सवाल शामिल ने। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਹੁਣ ਈਸਟਰਨ ਕਲਾਉਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਫੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ GST ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ GST 'ਚ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੋਜਰ ਕੁੱਕ ਨੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਲਾਉਨਸ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਗਿੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਲਿਬਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ GST ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ NSW ਦੇ ਟ੍ਰੈਜਰ ਡੈਨੀਅਲ ਮੁਖੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡ ਚੁੱਕੇ

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।
2: हां जी हां जी।

0: ஆஸ்திரேலியா வித் இமிகிரேஷன் தான் மசலா. நான் ஜாவ் இதர் உதர் சித்தே அவுட் ஐ எம் அட்வைசர் அப்படி மா போலி வித் சம்ஜன் துஹாட்டி லோடனும் நாளை வரையாந்தோ ஸ்கில் விசா 186 189 190 482 491 ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் பார்ட்னர் விசா பேரண்ட் விசா ஜா ஸ்டூடெண்ட் விசா தோ பிஆர் தக் ஹர் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் லே எக்ஸ்பர்ட் கைடன்ஸ் ஆஜ் ஹி பரோசே நாள் சம்பர்க் கரோ ஐ எம் அட்வைசர் கால் 02 9063 1618 ஹுன் பேராமேட்டா சிட்னி அதே நியூ டெல்லி விச் வி ஐ எம் அட்வைசர்
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरिस पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच
4: हां जी हां जी ओए

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू पीआर दी राह भी विखाई।

0: तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: You are listening.
2: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
1: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Radio Haji.
1: Stay tuned.

0: मैं।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au.
3: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा चा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: missing in the house.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

ऑस्ट्रेलिया, हाई मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM.

0: भावै।
1: जय प्रसाद सुसे सुई जय मन अठ पहता का जस गवी जय।
0: जय प्रसाद तुर सब को मान मुक्ता को जस रसन बखानै।
1: जय प्रसाद तेरा धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जपत दर गए मान पावे नानक पत सेती घर जावे।
1: जय प्रसाद अरो कंचन देही लिव लाओ तिस नाम स्नेही।
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सनी प्रभ ठाकर प्रभ ताके।
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उचे।
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे।
0: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय।
1: जय प्रसाद असुहस्त असवारी मन तिस पाको कबु ना बिसारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोहि प्रभ अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत सहते आई।
0: सहते आजो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है।
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी।
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह।
0: जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पेख है बिस्मार।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सो सहजे बसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सो सहज समावे।
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तू पट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूर है।
0: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच।
1: जय प्रसाद सब कीत होए नानक जाप जपे जप सोए।
0: आप जपाए जपे सो नाओ आप गाए सो हर गुण गाओ।
1: प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास।
0: प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए।
1: शर्म निधान प्रभ तेरी मैया आपो कछु ना किन्हु लया।
0: जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक किन कह कछु न हाथ।
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कह मन विश्राम अठ छे श्लोक।
0: आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचार्य कथा सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: साधक संग जल होत साध संग मल सगली को।
0: साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान।
1: साधक संग पूजे पवनेरा साध संग सुबहुत नबेरा।
0: साधक संग पाए नाम रतन साधक संगे कुपर जतन।
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी।
0: साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ल।
1: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा।
0: साध संग हो सब की रेन साधक संग मनोहर बैन।
1: साधक संग न कतु धावे साध संग अस्तित मन पावे।
0: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न।
1: साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापुनी।
0: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बींगा पैर।
1: साधक संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा।
0: साधक संग नहीं हो ताप साधक संग तजै सा बाप।
1: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बनियाई।
0: साधक संग न साधक संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह।
0: साधक संग बसै थानूचे साधु के संग महल पहुंचे।
1: साधक संग दिड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म।
0: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान।
1: साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटम निस्तारे।
0: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबा सुर देवा।
0: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन।
1: साधक संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम।
0: साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट तो होत निहाल।
1: साधक संग कुलूक तहर है साधक संग नरक पर हर है।
0: साधक संग इहा उहा सुहिला साध संग बिछर तहर मेला।
1: जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिठा जावे।
0: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक कुदरै साध सुन रसै।
1: साधक संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ।
0: साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तर है।
1: साधक संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग गड़गड़ डीठा।
0: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी।
1: साधक संग मेटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग।
0: साध की महिमा भेद ना जाने जीता सुने तेता बखियाने।
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर।
0: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत।
1: साध की शोभा उई ते उची साध की शोभा मूझ ते मूची।
0: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्राभेद न पाई।
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सत श्लोक।
0: मन साचा मुख साचा सोए अबर न पेखे एक बिन कोए। नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख।
1: दम ज्ञानी कह दिस समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान।
0: ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप।
1: दम ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सह स्वभाव।
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए

0: प्रकाश जैसे तर ऊपर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही बिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जन प्रवाप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा।
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा।
0: ब्रह्म ज्ञानी का होए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला।
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै पव संग।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत, ब्रह्म ज्ञानी अह बुद्ध त्याग।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद।
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र।
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए।
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी।
0: सुखमनी सुख अमृत पव नाम, भगत जना कै मन विश्राम। आठ आठ श्लोक।
1: उरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक हो अपारस सगल निस्तार है। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: मिथ्या नाही रसना परस, मन में पीत निरंजन दर्श।
1: पर तेरे रूप न पीख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत।
0: न सुने काहु की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा।
1: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है, मन की बासना मन ते टर है।
0: इंद्री जित पाई दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस।
1: वैष्णो सोजे सुपर सुपर सन, विष्णु की माया ते हुए भिन्न।
0: कर्म करत हुए ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म।
1: काहू फल की इच्छा नहीं बाछा है, केवल पात कीर्तन संग राचा है।
0: मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल।
1: आप दृढ़ है अवरह नाम जपावे, नानक हो वैष्णो परमगत पावे।
0: भगवती भगवंत भक्त का रंग, सगल त्याग है दुष्ट का संग।
1: मनते बिनसै सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म।
0: सात संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे।
1: भगवंत की टहल करे नितनीत, मंता नरपै विष्णु प्रीत।
0: हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे।
1: सुपंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में सुध है।
0: राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे।
1: हर की कथा हृदय बसावे, सुपंडित फिर जो न आवे।
0: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, सुख में जाने स्थूल।
1: सौ वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश।
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम।
1: जो जो जपे तिसकी गाथ होए, साध संग पावे जन कोए।
0: कर कृपा अंतर उधारे, पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे।
1: सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम।
0: आहो जुगत किते ना पाई है धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।
1: जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास।
0: आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतर भाय तन पाया।
1: सदा नित नित हर जान, सो दास दरगह प्रवान।
0: अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पर।
1: सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास।
0: सब की आ गया तुम हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे।
1: ऐसा हरक तैसा सोग, सदा अनंत है नहीं बियोग।
0: ऐसा स्वर्ण तैसी उसमाटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी।
1: तैसा मन तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान।
0: जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ प्रह कहिया जीवन मुक्त।
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित का राखे तैसा तिन्नाओ।
0: आपे कन करावन जोग, प्रभावे सुई फन होग।
1: असरे आप हुए अंत रंग, लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग।
0: जैसी मत दी तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अवनाश।
1: सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ नौ श्लोक।
1: उस्तत करै अनेक जन अंत न पारा वार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार। सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी।
1: कई कोट पै तीर्थ वासी, कई कोट मन पर महदासी।
0: कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते।
1: कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है।
0: कई कोट नपत नाम ते आवै, नानक करते का अंत न पावै।
1: कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी।
0: कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर।
1: कई कोट पर दर्ब कोहिर है, कई कोट पर दुख ना कर है।
0: कई कोट माया सुरमा है, कई कोट परदेश भरमा है।
1: जित जित लाभो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना।
0: कई कोट सिजती जोगी, कई कोट राजे रस भोगी।
1: कई कोट पंखी सर्पो पाए, कई कोट पाथर बिरख न पजाए।
0: कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल।
1: कई कोट ससिर सूर नखत्र, कई कोट देव दान विंदर सिर छत्र।
0: सुमदरी अपने सूतार है, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार है।
1: कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र।
0: कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत।
1: कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी।
0: कई कोट जाके न प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गा।
1: सब ते नेरा सब हूते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर।
0: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर्क सुर्ग निवासी।
1: कई कोट जन मै जीवै मर है, कई कोट बहु जूनी फिर है।
0: कई कोट बैठती खाए, कई कोट खाले तक पाए।
1: कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत।
0: जय जय भाणा तै तै राखे, नानक सब किश प्रभ के हाथे।
1: कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी।
0: कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म नहंते।
1: कई कोट दर्शन प्राप्यास, तिन को मिल्यो प्रभ विनाश।
0: कई कोट मा गए सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग।
1: जिनको है आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन।
0: कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड।
1: कई कोट होए अवतार, कई जोत कीनो विस्तार।
0: कई बार पसरो पासार, सदा सदा एक अहंकार।
1: कई कोट कीने बहु भात, प्रभ ते होए ब्रह्म माहे समात।
0: ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए।
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास।
0: कई कोट तत के बेते, सदा निहारे इको नेत्रे।
1: कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय सद सद ही जीवै।
0: कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सहि समावै।
1: अपने जन को सास सास समारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे।
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ दस श्लोक।
1: कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए। नानक तिस बलिहार नै, जल थल महियल सोए। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: करन करावन करने जोग, जो तिस पावै सोई होग।
1: किन मैं थापो थाप नहारा, अंत नहीं किछ पारा वारा।
0: हुक्मै तार अतर रहावै, हुक्मै उपजै हुक्म समावै।
1: हुक्मै ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मै अनक रंग प्रकार।
0: कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समाई।
1: प्रभावै मन गत पावै, प्रभावै ता पाथर त्रावै।
0: प्रभावै बिन सास ते राखै, प्रभावै ता हर गुण पाखै।
1: प्रभावै ता पथ तो धारै, आप करै आपन बिचारै।
0: दोहसरे आका स्वामी, खिलै विकसै अंतर जामी।
1: जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै।
0: कहो मानक ते क्या होयावै, जो तिस पावै सोई करावै।
1: इसका हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे।
0: अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै।
1: भरमे भूला दह दिसतावै, निमुख माहे चार कुंट फिरावै।
0: कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन ना मिले।
1: खिन मह नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज।
0: जाका दिष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दा दस पलटावै।
1: जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीश।
0: जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास।
1: अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई।
0: इसका बल नाई इस हाथ, कर्म करम सर्व को नाथ।
1: आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई फुन थियो।
0: कबहु ऊंच नीच में बसै, कबहु शोक हर खरंग हसै।
1: कबहु निंद चिंद व्यवहार, कबहु ऊब काश पयाल।
0: कबहु बेता ब्रह्म विचार, नानक आ मिलावन हार।
1: कबहु नृत करै बहु भांत, कबहु सोए रहै दिन रात।
0: कबहु महाक्रोध बिकराल, कबहु सर्व कियो त्रवाल।
1: कबहु होए बह बड़ राजा, कबहु पे खारी नीच का साजा।
0: कबहु अप कीर्त में आवै, कबहु भला भला कहावै।
1: ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै।
0: कबहु होए पंडित करे बख्यान, कबहु मोहन धारी लावै ध्यान।
1: कबहु तट तीर्थ स्नान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।
0: कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै भरमिया।
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, जो प्रा पावै तिवै नचावै।
0: जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए।
1: कबहु साध संगत ए हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै।
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश।
1: मंत्र नाम रते करंग, सदा विसै पार ब्रह्म कै संग।
0: ज्यो जल मैं जल आए खटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना।
1: मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान।
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ ग्यारह श्लोक।
1: सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहं अहंकारियां नानक गर्भ गले सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान सुनर पाती हो स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे बो जोन भरमावे
1: तन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे
1: धनवंता होए कर गुरु बावे तरन समान कछ संग न जावे
0: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आसु पल पीतरता का होए बिना
1: सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत
0: किसे ना बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जाका मिटै बिमान सो जान नानक दर गै परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: अनक यत्न करा तुम निद्रवे हर दर गै को कैसे गवे
1: आप सुको जो भला कहावे तिसह भलाई निकट ना आवे
0: सर्व किरिंजा का मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए
0: जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून मैं फिर
1: जब तारे को बैरी मी तब लग निचल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन सुमाए तब लग धर्म रह देश जाए
1: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे
0: सैस कटेला कोट तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग बिख्या के कर नह तृप्तावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजा स्वप्न मनोत बिते सब काज
1: नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए
0: करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाव
1: करन करावन करने हार इसका हाथ कहां बिचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप तब सोए
1: जो किछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हो कै संग
0: पूजे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक
1: मरन बिनसै आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए
0: आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओहो करने हार
0: उस ते पिन कहो किछ होए थान तनंतर एक ऐसोए
1: अपने चले तब करने हार कौत कर रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने बिख्यानी
0: सच सच सच सब की ना कोड मदे किने विरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर पार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी स्वर्ण बखानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत
0: मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ बारह श्लोक
1: संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: संत के दुखन आरजा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सुबाते ही
1: संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक बीतर
1: संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन कागजों लवे
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा में जल है संत के दुखन सब को छल है
0: संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए
1: संत दुखी का था को नाहे नानक संत पावे ता ओए भीगत पाहे
0: संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिंटिक न पाई
1: संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राजते हीन संत का निंदक दुखियार दीन
1: संत के निंदको सर्व रोग संत के निंदको सदा बिजोग
0: संत की निंदा दुख में दुख नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का निमित
0: संत का दुखी को डान लागे संत को दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी
0: संत का दुखी जन्म मरे संत के दुख ना सुख ते टरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता ले मिलाए
0: संत का दुखी अज बीते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे
1: संत के दुखी को ध्यान परमाइया संत का दुखी उजड़ पाइया
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किछ नाहे आपन बीजा पे ही खाहे
0: संत के दुखी को अवर ना रखन हार नानक संत भावे ता ले उबार
1: संत का दुखी ओ बिल लाए जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक इधर नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटाए की ला जो बुआर तिल खेत माहे बहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथ्या कहत
1: किरत नंद का तुर ही पया नानक जो तिस पावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिग रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी मां ना मरे ना जीवाइय
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उचले निराशा
1: संत के दुख न तृष्णा कोए जैसा पावे तैसा कोई होए
0: पया कितन मेटे कोए नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसके ओहो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार
0: सब की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याव सास गिरा
1: सब कछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेल अब करने हार दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़भागी नानक जन से
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम पग जना कै मन विश्राम अठ तेरह श्लोक
1: तजो सियानप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नाम नानक दुख भरम पौ जाए सतनाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
0: मन की टेक विधि सब जानु देवन को एक है भगवान
1: जिस कह दिया रह अगाए बहुर न तृष्णा लागे आए
0: मारे राखे एक आप मन कै कुछ नाही हा
1: तिसका हुक्म बूढ़ सुख होए तिसका नाम रह कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर पव सोए नानक बिघन लागे कोए
1: उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
1: नैनो पे ठाकुर कारंग साध संग बिन सह सब संग
0: चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा
0: वडबागी ते जन जग माहे सदा सदा हर की गुण गाहे
1: राम नाम जो कर है बीचार से धनवंत गनी संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछाने इतुत की हो सो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन माने नानक तिन निरंजन जाने
1: गुर प्रसाद अपन आप सूझे तिसकी जानो तृष्णा बुझे
0: सात संग हर हर जस कह तू सर्व रोग त्यो हर जन है तू
1: अंदर कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागे दुख
0: जिसको हर पर मंचित आवे सो सन सुहेला नहीं डुलावे
1: जिस पर अपना कृपा करे सो सेव कहो किसते डर है
0: जैसा सत तैसा दिष्ट आया अपने कारज में आप समाया
1: सोदत सोदत सोद सीजा गुर प्रसाद तत सा बूझिया
0: जब देखो ता सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
1: नह किछ जन्म है नह किछ मर है आपन चलित आप ही कर है
0: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट आज्ञाकारी तारी सब शिष्ट
1: आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राज थापो थाप
0: अविनाशी नाही किछ खंड तारन धार रहो ब्रह्मांड
1: अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तनमंत
1: प्रभु के सेवक सगलो धारण प्रभु के सेवक दुख बिसारन
0: आपे मेल लय कृपाल गुर का सज पै निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करह बड़ भाग है
0: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान
1: जो किछ करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा सह हर संग
0: सह सुबह होवे सो होए करने हार पछाणे सोए
1: प्रभु का किया जन्म मीठ लगाना जैसा सत ऐसा दृष्टाना
0: जिसते उपजे तिस महे सुमाए ओए निधान ओए सुख निदान उन्हों बनाए
1: आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ चौदह श्लोक
1: सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जा कै स्मरण उदरिए नानक तिस बलिहार सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
0: टूटी गानन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे
0: रे मन मेरे सदा हर जाप अवनाशी प्रभा पे आप
1: आपन की आकछु न होए जी सौ प्राणी लोचै कोए
0: तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जोत सगल घट सो है
0: तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब की तिसका दिया दरब है
1: अतसूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे
0: जे को होए बह दातार तिस दिन हार जाने गवार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग
0: ज्यो मंदिर को था मैं थमन त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
1: ज्यो पाखान नाव चढ़ता रह प्राणी गुर चरण लागत निस्ता रह
0: ज्यो अंत का दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास
1: ज्यो महाउद्यान मह मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जूत प्रगटावे
0: इन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए
0: दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्या तू तसै चितार
1: जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिर अजान
0: कौन बस ताई तेरे संग लपट रहो रस डूबी पतंग
1: राम नाम जा फिर दे माहे नानक पत सेती कर जाहे
0: जिसव कर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया
1: ताजब मान ले हो मन मूल राम नाम हृदय महतोल
0: लाद खेप संतै संचाल अवर त्या विख्या जंजाल
1: धन धन कह सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए
0: हो वापार बिरला वापार है नानकता कै सद बलिहार है
1: चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो
0: साध की तूर करो स्नान साध उपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए
0: अनक विघन ते साधु राख है हर गुण गाए अमृत रस चाख है
1: कोट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया
0: मृत्यु को जीवा ननहार भूखे को देवत आधार
1: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे
0: सब तिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एह करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रवचीत
0: भगत भगत सुनिए तिह लोए जाके हृदय को होए
1: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत
0: साची दिस सच आयाकार सच वर्ती साचा पासार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ पंद्रह श्लोक
1: रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रापिन तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
0: अविनाशी प्रभ मन में राख मान की तू प्रीत्या ਪਰਾਗ
1: ਤਿਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ
0: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
0: ਸਾਤਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨੁਰਾਗ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ
0: ਹਰਨ ਪਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ
1: ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਤ ਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ
0: ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਬ ਮੈਂ ਤਵੀ ਸਰਗਸਤ ਮੈਂ ਬੋਗੀ
1: ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ
0: ਜਾਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
0: ਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਤਿਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਰਹਿ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
0: ਉੱਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੇ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਕਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਬਿਤਕੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨਮਾਹੇ ਪੂਰਹੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
0: ਨਾਨਾ ਬਿਤ ਕਰ ਬੰਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਓ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੈ ਸਗਲੈ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਅਗਾਸ ਪਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਾ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਨ
0: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
0: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
0: ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੇ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਜਨ ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆਸਵ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
0: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮੀਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਕੋਇ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ
0: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕਲੇ ਗੁਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ 816 ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ
1: ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ
0: ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ
1: ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਸੁਨਤਾ
0: ਪੂਜਨਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ
0: ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
1: ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ
0: ਬਸਤ ਮੈਂ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ
1: ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇ
0: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ
1: ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
0: ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ
1: ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ
0: ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ
1: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕੋਈ ਨ ਲਾਖੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੇਵਕ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੈ
1: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
0: ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਖੈ ਪਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ
0: ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬੋ ਪਾਤ ਤਿਸ ਕੈ ਕਰਤ ਬਿਰਥੈ ਜਾਤ
1: ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ
0: ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ
1: ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਐ
0: ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਟਾਇਆ
1: ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਸੰਗ
0: ਨਾਮ ਰਸ ਚੋ ਜੰਤਪ ਤਾਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨ
1: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ
0: ਲੋ ਜਾਚੇ ਵਾਦਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ
1: ਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਹੈ ਸਮਾਏ
0: ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ
1: ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਣੋ
0: ਹਾਟ ਪੈਰ ਪਰ ਬਸੈ ਹਜੂਰੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੈ
1: ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ
0: ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਵ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ
1: ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਾ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ
0: ਅਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ
1: ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ 817 ਸਲੋਕ
1: ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ जाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: सतगुरु सिखी करै प्रताल सेवक को गुरु सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हेरै गुर बचनी हर नाम उचरै
0: सतगुरु सिखै बंधन काटै गुरु का सिख बिकार ते हटै
1: सतगुरु सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे
0: सतगुरु सिखा हलत पलत सवारै नानक सतगुरु सिखो जी नाल सुमारै
1: गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सहै
0: आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै
1: मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवके कार्ज रास
0: सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले
0: बीस विश्व वे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ
0: सर्वन दान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग दाता
1: ब्रह्म जन जन मै पार ब्रह्म एक कहे आप नहीं कछ भरम
0: सहज सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुरु भागी पाइए
1: सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत
0: संग्राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगह गवै
1: सुनकर बचन करन आगाने मन संतोखा तंपतिया ने
0: पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र अमृत दिष्ट पेखै होए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लय मिलाए
0: जे बाए कुस्तत अनेक सतपुरख पूरन बबे
1: काहु बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभु निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर खुदाई ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंधन नित कर है चरण कमल हृदय स्मर है
0: सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने
1: एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए
0: पुरका नाही कदे विनाश जाके मन पटे गुणतास
1: आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे
0: मोह माया कै संग न लेप मन मै राखै हर हर एक
1: अंधकार दीपक परगासे नानक पर मोह दुख तहते नासे
0: तप्त माहे ठंड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई
1: जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे
0: पौ चुका निर्भय होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे
1: जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी
0: चित पाई चूके भउ गवन सुन नानक हर हर जस सवन
1: निर्गुण अवसर गुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही
0: अपने चित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए
0: ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगा साध कै संग
1: रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी
0: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठारह श्लोक
1: साथ न चालै बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमाव ना नानक हो तन सार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार
1: अवरो पासा मीत बिसार हो चरण कमल रिद मै उतार हो
0: परम कारण सो प्रभ समर्थ दृढ़ कर गहो नाम हर रथ
1: एहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत
0: एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे
1: जिस तन को चार कुंट उठतावै सो तन हर सेवा ते पाव है
0: जिस को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत
1: जे शोभा को करहै भली करनी सा शोभा भज हर की शरणी
0: अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए
1: सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दरगै परवान
0: मन प्रबोधो हर के नाए दर्द स्तावत आवै ठाए
1: ताको बिघन न लागै कोए जाकै हृदय बसै हर सोए
0: कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: भाव बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास
0: सित कर जाए बसे अबनासी कहो नानक काटी जमफासी
1: तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा
0: आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव
1: यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार
0: अनको पावन छूटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे
1: हर की भगत करु मन लाए मन बंचत नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे धना तू क्या लपटावै मूर्ख मना
1: सुत मीत कुटांबर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा
0: राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार
1: अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पा सारी
0: जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना
1: गुर की मातू लिहे आने भक्त बिना बहु डूबे स्याने
0: हर की पद करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे
0: आप जप हो अवरै नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पाओ
1: सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ
0: गुण गावत त्रिय त्रस मैल बिन जाए हो मैं बिख फैल
1: होए अचिंत बसै सुख नाल सांस ग्रासर नाम संभाल
0: छाट सियान सगली मना सात संग पावे सजताना
1: हर पूंजी सांच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जयकार
0: सर्व निरंतर एको देख कहो नानक मस्तक जा कै मस्तक लेख
1: एको जापे को साला है एक सिमर एको मन आहे
0: एक स्के गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आ पूर्ण पूर है ओ प्राभ्याप
0: अनक विस्तार एक ते भय एक अराध पराचित गए
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता
0: सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ उन्नीस श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा दिवो हर नाम
1: साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर
0: सदा सदा प्रभ की गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आओ
1: चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत
0: एक ओट एक आधार नानक मांगे ना प्रभ सार
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए
0: जिन चख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने
1: सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग
0: परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
1: बडभागी जपया प्रसोए नानक नामर ते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभ होए ओ दयाल सेवकीनो सदा निहाल
0: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
1: पिछ पुनी शरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
0: जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
1: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे की आ जानै
0: सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै
0: सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै
1: गुरपूरै ताते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो हो काम आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो हो
0: पाए त्रिय संसार बिन प्रकृति तन हो सी चार
1: सर्व कल्याण सुख निद नाम बूट जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का हो तनास नानक नाम जपो गुणतास
1: उपजी प्रीत प्रेम रष्टाओ मन तन अंतर एही सुआओ
0: नेत्रो पेक तरस सुख होए मन बिकसै साधु चरण तोए
1: भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग
0: एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
1: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए
0: प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
0: आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन भाई
1: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
0: पली सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत
1: साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
0: मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जब अकार कुछ न दृष्टि तापा पुन तब कहते होता
1: जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वरन चिहिना जापत तब हर सो को किसे व्यापत
1: जब आपन आपा पार ब्रह्म तब हो कहां किस होवत परम
0: आपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
0: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए
0: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कवन कत डरे
1: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
0: अबनासी सुखी अपने आसन तै जन्म मरण को कहा बिनासन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ नरंजन अगोचर गादे तम कौन छुटे कौन बंधन बादे
0: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
1: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
1: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस
0: जह जो स्वरूपी जोत संग समावै तह किसे भू कौन तृप्तावै
1: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार
0: जा अपनी सुवा आपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई
1: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेदक तेव कहां कोचीन
0: जब आपने आप उतारै तो सगन अपसगन कहां बिचारै
1: जह आपन ऊंच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गर जानो आप
1: जह अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया
0: आपस को आपे आदेश तेहु गुण का नाही परवेश
1: जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जह आपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुन नहारा
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
0: जह आप रचियो पर पंच आकार तेहु गुण में की तीनो विस्तार।
1: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत।
0: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पैपार।
1: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान।
0: अपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है।
1: जह अवगत भक्त है आप जह पसर पासार संत प्रताप।
0: तू पाक का अपै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी।
1: आप है कौत कर आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग।
0: जिस भाव है तुस अपन नाय लावे जिस भाव है तुस खेल खिलावे।
1: बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यो बुलावो त्यों नानक दास बोले।
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम। अट इक्की श्लोक।
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार।
1: जंत सभावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लए समाए।
0: तुम ते पिन्ने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए।
1: जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए।
0: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता।
1: जी जंत्र सब ताकै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ।
0: जिस राखै तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारै।
1: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सरेक निरंजन राय।
0: जी की जुग जाकै सभात अंतर बाहर जानो साथ।
1: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार।
0: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल।
1: अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप।
0: प्रत पाले जी अनुभव पात जो जो रचियो सुत सहत्यार।
1: जिस भाव है तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए।
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया।
1: जान लागा हर इक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए।
0: सेवो को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए।
1: इसते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार।
0: बंधन तोर पै निर्वैर अंदिन पूजै गुर के पैर।
1: यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले।
0: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद।
1: राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार।
0: अमृत बचन हर की गुण गाओ प्रांत नुनकाए सुआओ।
1: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटै अज्ञान बिन सहंदीरा।
0: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो।
1: हलत पलत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार।
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया।
1: मनता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए।
0: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी।
1: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवे जाहे।
0: इसते दूर कहा को जाए उबरे रखन हार ते आए।
1: निरभउ जपै सगल भउ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै।
0: जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख।
1: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार।
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताकै कारज पूरा।
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट।
0: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप।
1: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान।
0: जिस मन बसे सोत निहाल ताकै निकट न आवत काल।
1: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया।
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भल जना कै मन विश्राम। अठ बाई श्लोक।
1: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी।
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा।
1: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे।
0: नौनद अमृत पब का नाम देही में इसका विश्राम।
1: सुन समाद अनहत है नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद।
0: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए।
1: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत।
0: करण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल।
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
0: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे।
1: जिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक।
1: वाणी प्रभु की सब को बोले आप अडूल न कबहु डूले।
0: सर्व करा कर खेले खेल मोल न पाइए गुणे अमोल।
1: सर्व ज्योत मह जाकी जो धार रहे हो स्वामी ओत पोत।
0: गुर प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिन मैं एहो विसास।
1: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म।
0: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन।
1: जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत।
0: जो जो होए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभ जाने।
1: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही।
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत।
1: तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार।
0: अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए।
1: कवन लिखत कवन कहिए दूर आपे आप आ भरपूर।
0: अंतर गज से आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए।
1: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा।
0: सगल समगरी जा का तना आपन जस आप ही सुना।
1: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया।
0: सबके मदल पत्तो रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे।
1: आ गया आवे आ गया जाए नानक जा पावे ता ले समाए।
0: इस ते होए सुनाही बुरा उरे कहो किने किछ करा।
1: आप भला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की।
0: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह।
1: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए।
0: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान।
1: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए।
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान।
1: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया।
0: जानावन कहे सुआओ जन कह संचित आवे ना।
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार।
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना के मन विश्राम। 8:23 श्लोक।
1: पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे।
1: सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद।
0: आस नित्या गोतरंग संत जना की दूर मन मंग।
1: आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरहो।
0: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार।
1: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद।
0: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो।
1: चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक।
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल।
1: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार।
0: उत्तम श्लोक साग के बचन अमोलीक लाल एह रतन।
1: संत कमावत हो तो दार आप तरह लोक कह निस्तार।
0: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग।
1: जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय।
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उदरे तिन कै साथे।
1: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए।
0: मिट गए बैर पय सबरेन अमृत नाम साध संगलैन।
1: सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव।
0: आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुरस न कहते।
1: कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभी खेप हमारी।
0: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत।
1: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान।
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।
1: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान।
0: हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए।
1: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध।
0: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान।
1: चार पदार्थ कमल प्रगा सब कै मध सगल ते उदास।
0: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि।
1: ए फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने।
0: एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए।
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी।
0: सगल मता केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम।
1: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै।
0: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए।
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्री तिस जन आवै हर प्रचीत।
0: मरणता का दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै।
1: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी।
0: दुख रोग बिन से वै परम साध नाम निर्मलता के करम।
1: सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम। 8:24 श्लोक।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old Geelong Road, Hoppers Crossing, Very Be Toyota, the smart choice.

0: Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. जिंदगी के कई सारे इन मरहलों से गुजरने के बाद अब बारी आती है कि हम हर रोज अपनी जिंदगी को कैसे जिए। बार बार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात करते आए हैं कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो जहां आप हैं उसके बहुत नजदीक ही आपको मिल जाते हैं और किस तरह उस सेंटर से जुड़ सकते हैं, कैसे वहां जाकर आपको लगता है कि आप परमात्मा के घर में हैं और कैसे ये कनेक्शन जो है वो जिस सशक्त होने का, जिस एम्पावरिंग का बात करता है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मुरली एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनसे रूबरू होते हैं हर रोज। क्या होता है ऐसा खास मुरली में, क्यों जरूरी है और किस तरह से हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं, इन सभी पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सस्य शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सस्य शिवानी, इतना सब कुछ हमने जाना है, इतना सब कुछ समझ लिया है, लेकिन एक बार फिर बात यही आ जाती है कि क्या मेरे या आपके द्वारा संभव है ये सब कह पाना, ये समझ पाना, ये जान पाना, या फिर ये वो परमात्मा है जो सीधी बात कह रहे हैं।
1: हर चीज जो हम इस प्रोग्राम के दौरान डिस्कस करें, हर ज्ञान की वो बात, हर वो सत्य वास्तविकता जिससे हम बहुत दूर हो चुके थे, वो परमात्मा द्वारा ही हमें समझाई जाती है। सृष्टि रंगमंच पर जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता, तो वर्तमान समय जो हम कहते हैं परिवर्तन का समय चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार है, यू नो, मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, कि इतना भय है। और बहुत बार सुनने को मिलता कि ये कलयुग है, आखिर ये कलयुग कब तक ऐसा चलेगा? तो कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग, कि आत्माएं सारी कलह कलेश में, घर घर में कलेश है और आत्मा सारा दिन में बहुत ज्यादा दुख और दर्द का अनुभव करती, तो ये कलयुग है। लेकिन कलयुग सदा तो नहीं चल सकता और वर्तमान समय आजकल देखे तो बहुत भय भी हो गया है कि आखिर इस सृष्टि का भविष्य क्या है, क्या होने वाला है आगे। तो यही वो समय है जो परमात्मा अपने वायदे अनुसार, आज दिन तक हमने कई बार ये पढ़ा कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अतीक लानी होगी तो परमात्मा का वायदा है कि मैं स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होगा। तो ये वो समय है जब वो निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते, और अवतरित होकर सबसे पहले वो हम आत्माओं को अपना परिचय देते कि हम कौन है आत्मा, और फिर आत्मा से जुड़ी हुई हर बात हमें समझ में आने लग जाती है, और फिर परमात्मा अपना परिचय देते कि जैसे तुम निराकार जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस, मैं भी तुम्हारे ही तरह, और अपना नाम भी बताते कि मेरा नाम है शिव, और क्योंकि वो हमारे पिता हैं तो हम उन्हें शिव बाबा कहकर पुकारते हैं। और फिर परमात्मा हमें समय का परिचय देते हैं कि समय जो ये चल रहा है ये नहीं कि कोई विनाश होने वाला है, क्योंकि वो हम बहुत डर में रहते, लेकिन एक परिवर्तन की बेला है। हम इस कलयुगी सृष्टि से सत्ययुगी दुनिया की ओर जा रहे हैं। सृष्टि तो वही होगी, लेकिन आत्मा जो वर्तमान समय कमजोर है वो जब शक्तिशाली बन जाएगी तो वही सृष्टि बहुत सुंदर बन जाएगी, प्रकृति पवित्र हो जाएगी। तो ये परिवर्तन का जो कार्य है कि अ बैटरी द सोल जो कम्प्लीटली वीक हो चुकी है, आज वो फिर से चार्जिंग की प्रोसेस पर चल चुकी है, वो पावर हाउस के बिना नहीं हो सकता। हम आत्माएं समझे, हम अपने आप को सशक्त कर लें, तो ये वर्तमान समय थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। और क्या होता कि वायुमंडल
0: आसपास जो माहौल है, बिल्कुल
1: वायुमंडल भी बहुत चैलेंजिंग है, तो अगर हम थोड़ा सा ट्राई भी करते फिर हमारे सामने इतनी सारी बातें आ जाती कि हम फिर से अपने आप को कमजोर महसूस करते। तो ऐसे समय पे वो पावर हाउस की शक्ति मिलना, वो परमात्मा से संबंध जुड़ना, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को इजी बना देता है। और सबसे सुंदर बात तो ये कि परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें जब रोज रोज सुनने को मिलता, जो हम सेंटर पे जाते और जिसको मुरली कहते हैं, वो निराकार परमात्मा शिव बाबा के डायरेक्ट सुनाए हुए महावाक्य, वो महावाक्य जब हमें सुनने को मिलते तो वो प्योर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जब पढ़ती जाती है, तो जैसी इन्फॉर्मेशन
2: उसी से थॉट्स चेंज होते जाते हैं, उसी से बिलीफ सिस्टम में क्लैरिटी आती जाती है कि आज दिन तक हम क्या सोच के चल रहे थे। और बस थोड़ा सा फिर प्रोसेस होता है उसको अपने जीवन में ट्राई आउट करने का, और जैसे ट्राई करते हैं तो उस सुप्रीम टीचर की दी हुई टीचिंग है तो लगता कि ये तो ईजी है, इसको ऑब्स्टिकल तो मैंने ही बनाया हुआ था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, करने लगे तो लगता है ईजी है। और जैसे ही वो प्राप्ति होती गई तो और करने की मोटिवेशन मिलती गई, एंड मेडिटेशन में क्योंकि वो पावर भी साथ में मिलती, तो एक है नॉलेज और दूसरी है पावर, और ये दोनों चीजें मिल जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल होने लगता है। हम हेल्दी होते जाते हैं, तो किसी भी परिस्थिति को फेस करने की पावर क्रिएट नहीं करनी पड़ती, इट्स लाइक नेचुरली आई एम बिकमिंग पावरफुल। तो इसलिए अगर हम थोड़ा समय निकाल कर सेंटर पे जाते हैं तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं बहुत सिंपल होते हैं, दे आर सो सिंपल कि एक क्षण के लिए आप समझेंगे इतना सिंपल,
3: यू नो, ये तो मुझे मालूम था। हाँ, कितनी बार ऐसी बात,
2: इतना सिंपल, क्योंकि सुप्रीम टीचर ने हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को एकदम सिंपल करके
3: इतना सहज सा बन जाता है। बिल्कुल। वहां से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मुरली, आज तो हम मुरली की बात कर रहे हैं और मुरली सुनेंगे भी हम कुछ, लेकिन कितने बजे, क्योंकि वक्त का जो एक हर रोज वहां वक्त निकालना, ज्यादातर स्केड्यूल्स अगर हम देखते हैं तो मुश्किल हो जाता है, तो क्या कैसे हम कब कब मुरली जो है वो सुनाई जाती है?
2: जो हर सेंटर पे, एवरी सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी कंट्री, एक होती है मॉर्निंग क्लास और एक होती है इवनिंग क्लास। तो मॉर्निंग क्लास हर सेंटर पे अप्रोक्सीमेटली 6:30 और 7 के बीच शुरू होती, थोड़ा सा सिटी में वेरी करेगा, बट अदरवाइज नॉर्मली इट इज एनीवेयर बिटवीन 6:30 से 7 बजे सुबह, और ये अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स to 1 आवर की क्लास होती, जिसमें 10 मिनट्स 15 मिनट मेडिटेशन भी होता एंड 45 मिनट्स के लिए हम ये ज्ञान की चर्चा भी करते। तो मॉर्निंग क्लास एक है, फिर दूसरा है इवनिंग क्लास, कि जो लोग मॉर्निंग में नहीं आ सकते, तो इवनिंग में भी समय थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा सेंटर पे, बट एनीवेयर बिटवीन अगेन 6:30 to 7:30, शाम के 6:30 से 7:30 बजे के बीच क्लास होगी हर सेंटर पे। लेकिन इसके भी अलावा अगर आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइमिंग नहीं सूट करता, इसके भी अलावा आप मॉर्निंग 8 o'clock से दोपहर 12 बजे तक कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं और आपको बहने मुरली सुनाएंगी, और शाम को भी 4:30 से 7:30 बजे तक आप कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं।
3: तो शिवानी, आज क्योंकि हमने पहले भी बात कही थी कि तय किया था कि मुरली कुछ
2: महावाक्य डायरेक्ट सुनते हैं, जैसे कई बार हम लोगों का क्वेश्चन उठता कि हम करना तो चाहते हैं, हम उस स्टेज तक पहुंचना तो चाहते हैं जो स्टेबिलिटी की है, या जिसको हम कहें कम्प्लीशन की है या पॉजिटिविटी की है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाते, क्या है जो हमें रोक देता है? तो शिव बाबा परमात्मा हमें सुनाते कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुख्य दो कारण देखे जाते जो उससे हमें रोकते हैं। एक तो है वेस्ट अर्थात गंवाना, और दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। अब फिर बाबा ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसका अर्थ क्या। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। बहुत सारी बीमारियां ओबेसिटी के कारण होती है, तो बाबा ने कहा सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति का कारण कि क्यों नहीं पुरुषार्थ तेज हो पाता, वो है वेट ज्यादा। तो वेट कम न करना, जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से भी आत्मिक रोग भी स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बाबा इतनी सिंप्लीफाई करके उसको समझाते हैं कि हमें क्लियरली दिखाई देता है कि आत्मा पर बोझ इतना ज्यादा है कि बीमारियां फिर जो रोग हैं आत्मा के वो ऑटोमेटिकली आ जाते। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण क्या होगा?
3: बहुत से थॉट्स होना एक्चुअली,
2: पर वो किस तरह के थॉट्स?
3: हाँ, कहीं ना कहीं हर्ट, एंगर, नेगेटिविटी, अब तो समझ में आता है,
2: समझ में आ गया ना, ये सारा बाबा का ही समझाया
3: जिन्हें हम इमोशन कहते हैं।
2: सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण होता है सड़ी हुई चीजें खाते,
3: जंक खाना,
2: जंक खाना। तो बाबा ने जंक खाने के लिए कहा सड़ी हुई चीजें खाते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जंक है, क्योंकि उससे कोई एनर्जी नहीं मिलने पाती, बिल्कुल जंक याद में फिट करने जैसा। तो अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की है अर्थात न खाने की है,
3: आधे से ज्यादा वक्त हम जिंदगी का इसी पर,
2: नहीं उससे भी ज्यादा
3: बहुत ज्यादा समय सोच रहे
2: पास्ट में होता है। सी पास्ट कैन

0: कमियों या अवगुणों का स्वयं में धारण करना,
1: दूसरों को देख देख के उनकी गलतियां।
0: परमात्मा ये बहुत क्लियर करके हमें, ये बहुत डीप फिलोसफी है जो बाबा ने आकर बहुत सिंपल कर दिया कि जितना समय आप किसी आत्मा के अवगुण को देख रहे हो या आप किसी कमजोरी को देख रहे हो, तो आप समझ लो कि उसको आप अपने अंदर धारण कर रहे हो। सो इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू दिस एट द मुरली, आई वाज लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप किसी की कमजोरी को देख रहे हो तो वो आपकी कैसे बन जाएगी। बट देन स्लोली ग्रेजुअली यू रियलाइज कि किसी की कमजोरी को देखना मतलब क्या,
1: उसी से होकर गुजरो।
0: नहीं, वो थॉट्स क्रिएट करना ना, लेट्स से कि मैं आपके अंदर कमजोरी देख रही हूँ कि आप बहुत गुस्से वाले हो, लेट्स से, एंड मेरा फोकस सारा इस पर आ जाता है, तो मेरी हर थॉट जो क्रिएट हो रही है वो क्रोध से रिलेटेड है। इसका मतलब आपकी एनर्जी मैंने कंज्यूम कर ली। और इसी का ऑपोजिट कि हर आत्मा की विशेषता को देखना
1: कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार वाली है, बहुत प्यार है।
0: क्योंकि हर आत्मा के अंदर
1: अच्छाई तो है,
0: दोनों चीजें हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बहुत ज्यादा आज कमियों को ढूंढता रहता है।
1: और बहुत अच्छी बात यह है कि जहां हमने कमियों को ढूंढना शुरू किया मतलब उस कमी को हमने खुद धारण कर लिया।
0: और अगर ये समझ में आ जाए तो हम कितना अटेंशन
1: हम नहीं करेंगे। हाँ, हम क्यों करेंगे? डेफिनेटली द वे यू नो लाइक समवेयर व्हेन वी अंडरस्टैंड कि जैसे गुस्सा करते हैं हमारे ब्रेन सेल्स परमानेंटली डेड हो जाते हैं, तो वो गुस्सा करने का थॉट भी नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा। अब यही मुझे समझ में आने लगे कि जो कमजोरी मुझे आपके अंदर अच्छी नहीं लग रही है, लेट्स से मुझे नहीं अच्छी लगती कि आपके अंदर ये आदत है, लेकिन उसके ऊपर फोकस करने से आपके अंदर तो वो है ही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है और एक्चुअली मैं उसको ग्रहण कर रही हूँ, तो कितना डैमेज है। और चिंतन ये कर रही हूँ कि आपको कैसे चेंज कर दूँ कि आपके लिए ये बहुत हानिकारक है, लेकिन वो चिंतन करते करते मैं उस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करती हूँ। तो बाबा ने कहा दो बातें, सड़ी हुई भोजन है जो हम खाते हैं, बीती हुई बात जो हम बहुत ज्यादा खाते हैं, और दूसरा है आत्माओं की कमियां वो व अवगुण को स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु ही कहेंगे। तली हुई जो वस्तु होती है वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है, तली हुई है हम सबको पता है कि वो हार्मफुल है, फिर भी वो बहुत टेम्पटिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो बाबा ने कहा तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, न दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाले भी होती है। वैसे यहाँ भी फिर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना, गॉसिप। एंड अगेन गॉसिप करना मतलब अगर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं किसी को तो हम वही एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन गॉसिप मतलब किसी के बारे में बात करना, इधर उधर की बात करना, पता होते हुए भी अट्रैक्टिव बहुत लगती है और बहुत जल्दी हम उसकी तरफ,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ सुलेस दे रही होती है, वो हमारे किसी न किसी इनर वीकनेस को वो स्ट्रांग कर रहे होते हैं।
0: तो इसलिए कितनी अच्छी तरह से बताया कि तली हुई चीज पता भी है
1: कि नहीं अच्छी, हार्मफुल है,
0: फिर भी वो आकर्षण करती है, न चाहते हुए भी करते हैं कि थोड़ा सा खा ले। इसी तरह यहाँ जो आकर्षण की चीजें हैं वो है एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। कितनी बार एक दूसरे के पास जाते हैं और क्या खबर है, यू नो कि क्या खबर मिलती है, समथिंग न्यू, ऑफिस में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है। लेन देन करने का होता है लेकिन उसका रिजल्ट, कहते हम बातों में लेन देन कर रहे हैं सिर्फ, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, न्यूज एक्सचेंज, उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि हो जाती है। आपको पता है वो ऐसे, आपको पता है वो ऐसे, जितना मैं जिसके साथ शेयर करूंगी तो एक दो के प्रति हमारी क्या हो जाएगी, घृणा दृष्टि हो जाती है। समझते हैं मनोरंजन है,
1: अगेन
0: टाइम पास नहीं करते, क्या कर रहे थे, बस टाइम पास बातें कर रहे थे, लेकिन अनेकों के मन को रंजन करते हैं, अनेकों के मन को चोट पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है लेकिन रिजल्ट गिराने वाला है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण से वेट बढ़ जाता है। हमें रियलाइज भी नहीं होता सारा दिन में कि किन बातों से आत्मा के ऊपर का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने तीन मोस्ट

0: इम्पोर्टेंट बातें आज बताई, पास्ट का चिंतन करना, बीती हुई बातों के बारे में सोचना, दूसरा आत्माओं की कमियां कमजोरियों को देखना, और तीसरा व्यर्थ समाचार की लेन देन करना, जो हम समझते कि मनोरंजन है लेकिन अनेकों के मन को रंजन करता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ी नहीं लगा सकते, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे ही यहाँ भी जब आत्मा पर इतना बोझ हो जाएगा तो यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहेंगे हम करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो वो हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो सारा दिन में छोटी छोटी बातें कर दी इसकी वजह से आत्मा पर बहुत बोझ हो गया है। अब जब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता। सारा दिन हल्का रहना चाहते हैं, इंटरनली उड़ते रहना चाहते हैं लेकिन हैवी हो गए, आई कांट फ्लाई इनसाइड। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। चढ़ती कला अर्थात मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रही है, इन अ बेटर डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन,
1: बिकॉज आई बी सो हेवी, इट्स सो डिफिकल्ट टू क्लाइम अप,
0: वो हो नहीं पाएगा। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाता। अगर किसी का बहुत ज्यादा वेट है उसको सीट बहुत मुश्किल से उसके लिए मिलती है, और अगर कोई बहुत पतला है वो कहीं भी फिट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसी तरह हम अगर आत्मा भारी है तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को सेट नहीं कर पाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए हल्के रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा भी बार बार याद दिलाते कि वेट कम करो। इसका साधन क्या साधन होगा वेट कम करने का?
1: एक्सरसाइज।
0: जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे ही आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा हम वेट को कम कर सकते हैं। अब बाबा ने ये भी बताया कि योग अभ्यास क्या करना है। अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी, कर्म कर रहे हैं ना, कर्म से तो न्यारे नहीं होंगे, तो अभी अभी कर्म योगी साकारी, साकारी मतलब कॉर्पोरियल फॉर्म में, इस साकार शरीर में, तो इस क्षण इस साकार शरीर में, नेक्स्ट क्षण
1: निराकार,
0: निराकार, यू नो दिस इज लाइक
1: डू दिस एक्सरसाइज,
0: दिस एक्सरसाइज। अब जैसे हम स्ट्रेट हैं एंड देन वी बेंड डाउन एंड टच, अगेन कम बैक स्ट्रेट, अगेन बेंड डाउन एंड टच, जब हम बार बार ये करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और फिर हम किसी भी सिचुएशन में
1: हैंडल कर सकते हैं, यू नो।
0: अगर मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, यू नो, तो फिर अगर मुझे बहुत मूव करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है। लेकिन रोज वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने से किसी भी सिचुएशन में बहुत इजी।
1: तो दैट्स वंडरफुल, यू नो, साकार और निराकार, जैसे सिचुएशन आएगी मुझे निराकार जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी,
0: नहीं आएंगे। और ज्यादातर होगा क्या कि बार बार ये एक्सरसाइज करने से मेरे अंदर इतनी पावर उस टाइम भरी होगी, जैसे हम हमेशा अनुभव करते कि दो मिनट में योग करते तो कितना पावरफुल लगता है, तो अगर हर घंटे ये किया होगा साकार निराकार, साकार निराकार, और ये हम घंटे के बीच भी कर सकते हैं। निराकार अर्थात जो इस साकार दुनिया से परे है, जो हम हमेशा देखते कि परम धाम अपना घर, तो एक सेकेंड मैं यहां हूं, अगले सेकेंड
1: वहां पहुंच जाते।
0: अभी क्या हो रहा है, हम बैठते हैं करने लगता है, पहुंच नहीं रहे, हो नहीं रहा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसको सारा दिन में अगर अभ्यास किया होगा, एक सेकंड यहाँ नेक्स्ट सेकंड वहां, तो फिर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी बन, साकार सृष्टि का पाठ बजाना, इस साकार सृष्टि पर अपना पाठ बजाना, और अभी अभी निराकारी बन, परम धाम का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र होती जाएगी, बिकॉज जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी उतना फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत इजी हो जाएगा। और जितनी बार हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस
1: ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, एक्चुअली
0: सोल कॉन्शियसनेस मेरी नेचुरल बनती जाएगी, और जितनी सोल कॉन्शियसनेस होती गई ईगो खत्म होता जाएगा, और जहां ईगो खत्म हो रहा है वहां सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है क्योंकि सेल्फ एस्टीम मेरा बहुत बढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि ये सब कुछ समझ तो आ जाता है हमें, लेकिन फिर भी करते करते इस यात्रा के दौरान मुश्किल क्यों लगता है? सहज फिर भी मुश्किल लगता। तो बाबा ने कहा ज्ञान का कोर्स तो 7 दिन का ही है, 7 दिन में सब कुछ समझ में आ जाता, सारी पॉइंट्स भी समझ में आ जाती, सत्य परिचय भी मिल जाता, लेकिन फिर भी चलते चलते कहते ये मुश्किल क्यों? और जबकि इस राजयोग को हम कहते ये सहज राजयोग है, लेकिन फिर भी हम खुद ही उसको मुश्किल बना देते। परंतु मुश्किल क्यों होता है? उसका कारण है अपनी ही कमजोरी, कोई ना कोई पुराना संस्कार। बाबा ये नहीं कहता आपका संस्कार, बाबा नेवर सेज कोई ना कोई आपका संस्कार बीच में आता, बिकॉज ही इज वेरी क्लियर कि आपका संस्कार तो ओरिजिनल, कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है, जो हमने देखा ऑब्स्टिकल अपने ही संस्कार कई बार बन जाते हैं, और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। देखा ना, ऑब्स्टिकल आएगा हम उसको ही तोड़ने लग जाते हैं, और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं,
1: थक जाते हैं।
0: लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगाना है। द होल हर्डल थिंग कम्स फ्रॉम द मुरली। तो कई बार भाई बहने कहते हैं ये कहाँ से इतना सिंपलिसिटी से आता, ये सारा कुछ तो बाबा ने मुरली में ही सुनाया है। तो पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। ये क्यों हुआ? ये होना नहीं चाहिए, आखिर ये कब तक चलेगा? ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों होता है? ये सब है व्यर्थ संकल्प, पत्थर को तोड़ने का प्रयास। क्यों हुआ? क्या कर रहे हैं हम? मूव अहेड? नो, वील स्टैंड देयर,
1: वी स्टक देयर एक्चुअली।
0: तो कितने बाबा कहते सारे आपके क्वेश्चन है ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। जो क्यों हुआ ठीक है, समझ में आ गया, होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये होना नहीं चाहिए था, आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों? तो ये सारे व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है, लेकिन एक ही शब्द है, ड्रामा। ये ड्रामा की ये सीन है, इस सीन को एक्सेप्ट करें एंड
1: गो अहेड,
0: जंप। इसे पत्थर तोड़ो नहीं, पत्थर के ऊपर जंप कर जाओ। लेकिन उस समय इस पॉइंट को याद रखना है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, बेनिफिशियल है। तो उसके लिए एक ही वर्ड याद रखना पड़ता, ड्रामा। ड्रामा में ये सीन इस टाइम जैसी है वैसी परफेक्ट है। दूसरी कमजोरी ये होती है कि समय पर पॉइंट टच ही नहीं होती। बहुत सारा ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, पढ़ भी लिया, यहाँ बैठ भी गया, लेकिन बाबा कहते हैं समय पर तो पॉइंट याद ही नहीं रही।
1: हाँ, जब सिचुएशन आ गई तो
0: समय पर जब वो परिस्थिति आई, बाद में सोचेंगे राइट एक्सेप्ट करना चाहिए, चेंज तो हम लोगों को कर नहीं सकते, तो बाद में सारी पॉइंट्स याद आ जाती है, लेकिन समय पर वो पॉइंट टच नहीं होती। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि में या डायरी में बहुत सारे हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वो पॉइंट टच नहीं होती। इसके लिए क्या करें? सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो। इट शुड बी देयर ऑन माय टॉप शेल्फ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आती जाती है ना, और ये सारी जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं अंदर के कबर्ड में चली जाती है। तो फिर जब वो परिस्थिति आती है तो उतना टाइम नहीं होता कि जो उसको बैक ऑफ द माइंड से आगे लाना है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि हर रोज ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो, और यही रिवीजन का साधन मुरली बन जाती है। क्योंकि रोज जब हम सेंटर पर मुरली सुनने जाते हैं तो ज्ञान के वो पॉइंट्स
1: रिपीट होते जाते हैं,
0: रिवाइज होती जाती है बार बार, रोज रोज रिवाइज। अगर हम महीने में एक बार सुने तो फिर तो कभी भी नहीं याद रहेगी परिस्थिति के दौरान। अनुभव में फिर लाते रहो, पहले रिवाइज करते रहो, फिर उसको अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो, और अपने आप को चेक करते करते साथ में चेंज करते रहो। सिर्फ नॉलेज को पॉइंट बनाकर डायरी में रखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो चेक करते रहो, और चेक करते करते साथ साथ चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो पत्थर तोड़ने में टाइम वेस्ट होता है कि क्यों, क्या, कैसा, तुरंत वर्ड याद आएगा ड्रामा एंड आई जंप। ड्रामा मीन्स एक्सेप्टेंस, जैसे ही हम ड्रामा शब्द कहते तो एक्सेप्टेंस याद आता। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना।
1: व्यर्थ के संकल्प,
0: आई जस्ट हैव टू विजुअलाइज माई सेल्फ डूइंग दिस
1: एक्चुअली,
0: कि परिस्थिति है वो एक पत्थर ऑब्स्टिकल सामने खड़ी है और मैं जितनी बार व्यर्थ संकल्प उसके प्रति क्रिएट करती तो मैं उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये मजदूरी करना छोड़ दो। अब इतनी सुंदर ये महावाक्य होते कि इतनी सुंदर बात सारा दिन में ऑटोमेटिकली मुझे याद रहती है और जब वो सीन बनाकर उसको फिट कर लेते हैं
1: व्हेनेवर द प्रॉब्लम कम्स एक्चुअली, ये तो हमने भी रियलाइज किया है कि मेमोरी में अगर आपके आ गया एक बार तो वो कभी भी फ्लैश आ जाता है। जैसे सिचुएशन होती है धीरे धीरे ये होने लगता है कि जैसे सिचुएशन आएगी वही फ्लैश आएगा आपका,
0: क्योंकि आप रेगुलरली सुन रहे हो ना, तो रेगुलरली अंदर फीड करने से वो ज्ञान की पॉइंट एकदम फ्रेश लेयर पे है तो वो तुरंत से आ जाएगी। रेगुलरली नहीं रिवाइज करेंगे तो परिस्थिति क्रॉस होने के बाद में रियलाइज होगा कि ऐसा होना चाहिए था।
1: तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए मुरली आपने हमें सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम
1: शांति। जीवन को चलाने के लिए हमें हर रोज दिशा निर्देश चाहिए क्योंकि हम उस युग में हैं जहां शायद स्व के साथ काम करके, अपने आप काम करके, पूरे एनवायरमेंट के साथ हम एक ना हो पाए और जिस राह पर हम चलना चाहते हैं वो ना चल पाए। ऐसे में सेंटर पे जाना और मुरली सुनना जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। कोई बात है, कोई ऐसा सवाल जो आपके पास है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
2: हमारे फोन नंबर है 9999334555, 9999334666, 9873666655 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
1: अवेकनिंग इस्लामा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आपके सवाल अभी भी हमारे पास है तो उन्हीं सवालों का जवाब मिलकर तलाशेंगे आने वाली घड़ी में। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सोखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की,

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: Hanji, 1674 AM.

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Salman Khan, and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan, and you're listening to Radio Hanji.
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

ग्रोवर, स्वीट ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।